थो रेडियो नेपाल ख नेपाल बासे समाचार जे उपेश पाखिना दिशा थौ नेपाल सम्बत चिन्स पिखुद गोलाथो एकादशी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा केन्द्रीय दुजय नीति गोसा गोगु नीति संगठन व नेतृत्व या कार्यशाला ए न्यागुदु रासोपा कार्यशाला नीति संगठन व नेतृत्व श्रृङ्खला छगु ना ब्युगु कार्यशाला पार्टी नीति संगठन सुदृढीकरण नेतृत्व क्षमता विकास या बारे सल जुयाचुङ्गु रासोपा संगठन विभाग प्रमुख प्रमोद न्यौपाने दाइदिगु ख कार्यशाला पार्टीया उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्ने पार्टीया प्रस्तावना सामाजिक लोकतन्त्र व उकिया आधार बारे ज्यापो न्यबैगु ज्याधलदु महामन्त्री विपिन कुमार आचार्य पार्टीया आधारभूत मुह मान्यता पूर्व छ्यान्जे सुरेन्द्र अर्याल बजेट निर्माण या वैज्ञानिक प्रक्रिया व उपसभापति सुविता गौतम पार्टी व सरकार दुथुया अन्तर सम्बन्ध पङ्ग व जेनिगु उपायबारे ज्यापो न्यबैगु ज्याधलदु बारा जितपुर सिमरा या सोध दुम गरिमा चौधरी या त जुगु छाका या विशेष सरकार व छेजपी दथुई सुङ्गु धल या सहमति जुगुदो गृह मन्त्रालय हिग जुगु सलसँग गृहमन्त्री सुदन गुरुङ नाप स्वापुदुगु मन्त्रालय मन्त्रीपी पीडित मस्त गरिमा चौधरी या अभिभावक व सरकार प्रतिनिधि सहमति जुगु ख सहमति कथन जगन्य आपराधिक झाका नागरिक या त अधिकारविद सुनु दुने प्रतिवेदन ह्यवय त कोसुगुदु अथे कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय नेम दुज दुगु गरिमा न्याय संकल्प समिति निसुनेगु धागुदु अथे गरिमा

चौधरी याद स्वाता देखे त कुत या गुनाप धागुदु सहमति पौस नेपाल सरकार पाकिङ गृहमन्त्री सुदन गुरुङ पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम महिला बाल बालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादी व कृषि वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरी लाची तैदिगुदो अथे पीडित छेज पाकिङ गरिमा चौधरी या अबु मनोज कुमार चौधरी व मा मानमती चौधरी सहमति पौस लाचे तैदिगुदो सरकार हो दुर्गा प्रसाई नेतृत्व राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति व नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल दथी चिन पेङ्गु धल या सहमति जोगुदो सहमति कथ महाअभियान यानाचङ्गु धर्ना व आन्दोलन या फुक्क ज्याजो मिग निसिंह कोठगुदो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद ज्याकु या सहसचिव लीलाधर सुवेदी व महाअभियान या पाखे सल कमिटी या कजी विष्णु बोहरा छेत्री सहमति पौस लाची त्यादिगुदु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद ज्याकु कथ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सोनिगा तिथि सरकारी ज्याकु अनुगमन याना सेवा प्रवाह सुधार कर्मचारी या ई पालना व कोचिनातोगु ल व आचरण पालना या त उज ब्युगुदो केन्द्र या कथ लिपाङ्गु इले ए यल व खोप या चिन यागु ज्याकु अनुगमन यागु ख अनुगमन यागु ज्याकु स यातायात व्यवस्था ज्याकु एकान्त गुना व जडीबुटी जिल्ला खेलकुद विकास समिति खोप व यल ए महानगरपालिका वडा ल्या सात व आठ या ज्याकु रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डिभिजन भवन ज्याकु सानोठिमी मनोरा जग्गा एकीकरण आयोजना आन्तरिक राजस्व ज्याकु कोटेश्वर जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभाग राष्ट्रिय मत्स्य प्रबन्धन तथा संरक्षण केन्द्र आन्तरिक राजस्व ज्याकु बालुजु व यहाँ दुग्ध वितरण आयोजना ज्याकु ख प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह हिग शनिले पवित्र धार्मिक स्थल मुक्तिनाथ या दर्शन यनादिगुदो प्रधानमन्त्री शाह हिग शनिले मुक्तिनाथ या दर्शन यनादिगु जिल्ला प्रहरी ज्याकु मुस्ताङ धागुख ये पाखे निजी भ्रमण या नीति छयादीमा प्रधानमन्त्री शाह स्वता इले बेनी जोमसम सडक जुया मुस्ताङ या जोमसम थेनादिगु ख प्रधान न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्मा याक्न न्याय बिगु दाइदिगुदो न्याय बिफट धासा जक जनता आशा व भरोसा न्यायप्रति अपुइगु वेक्ल कनादिल उच्च अदालत पोखरा बाग्लु इजलासे थिनादिमा प्रधान न्यायाधीश शर्मा याक्न न्याय सम्पादन या नीति अदालत प्रविधि या त छेले मागु विचार बब्यादिल परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल नेपा या अर्थतन्त्र बुलु भिना वगु चि पिहा वगु धैतिगुदो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी टोखा नगरपालिका एक कार्यसमिति हिग छोरे यागु छगु ज्याजोस वेक्न थथे धैतिगु ख थुसी कर मुइगु झिगु प्रतिशत अपोगु वेक्न कनादिल शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल अतिजम जुपी मस्ते त नेगुली प्रदेश आवासीय विद्यालय पलिस्ता यागु धैदिगुदो मिग कैलिया धनगढी गोसा गोगु छगु ज्याजोस मन्त्री पोखरेल अतिजम जुपी मस्ते गु नीति स्वास्थ्य शिक्षा नीति सरकार गम्भीर जुगुन कनादिल वेक कथ अतिजम जुगु विशेष आख बुङ्की त नुगु शिक्षा ए न कघागुन वेक्ल कनादिल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ कोशी प्रदेश या मत या नीति महाकथन ज्या यागो धाइदिगुदो कोशी प्रदेश या भ्रमणले नेपाल विद्युत प्राधिकरण या प्रादेशिक तथा वितरण ज्याको या प्रमुख कर्मचारी जनप्रतिनिधि पिनिगु सरकार जुगु निकाय या प्रतिनिधि नापमिग जुगु सलस वेक्ल मत वनिगु पङ्ग याक्न दिकेत इनापियनादिल भूमि व्यवस्था सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल भूमि सम्बन्धी पङ्ग जेङ्गेत सरकार या उच्च प्राथमिकता दुगुली सकलपच्चिया ग्वाली या मागुखे ब ब्यादिगुदु कैलालिया धनगढी उपमहानगरपालिका मिगजुगु ज्याजोस वेक्ल थथे धाइदिगु ख थो न्हने भूमि समस्या समाधान समिति कैलालिया मुज्या वेक्ल खुस
नि दुनिहे लालपूजा इनाबिगु न कनादिल। कृषि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क कृषि उत्पादन ओ उत्पादकता अपेक्षत गुस भिङ्गु जात्या कृषि पुसा विकास यागु धागुदो थिति भौगोलिक फे ल कथ तराई निसे उच्च पहाडी तक पाछी जुगु कथ कृषि जात्य पुसा देखुगु परिषदीय प्राविधिक अधिकृत ऋषिराम अधिकारी ताइदिगु ख। जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ मधुगो या त कया सिक्किम सरकार भाषा संस्कृति विभाग पाखे दुःख पोङ्कुदो विभागीय अनुसन्धान अधिकृत विकास प्रधान छोगो विज्ञप्ति पिथना दिसे जनकवि श्रेष्ठ मधेया सिक्किम या सक्ल नेवा भ्या साहित्य व संस्कृत प्रेमी पि तसक मर्महात जुगु ख तैदिगु ख। सिक्किम या सक्ल नेवा भाषा साहित्यकार चोमी हो नेपाल भाषा शिक्षक शिक्षिका पि पाखे मुदुम जनकवि श्रेष्ठप्रति श्रद्धाञ्जलि तेसा छे नेपाली ओ नेवा भाषा साहित्य लाग्या वक्ल यनादिगु जो मधुगु योगदान सदा लुमुना चुनिगु ख तया तगुदु। सिक्किम सरकारे बुनेको थिए छेला बुला वयाचुङ्गु नेवा भ्या बोङ्केको सफली जनकवि श्रेष्ठ या चिनाखत वेक या हे अनुमति दुथना चुङ्गु ख नेत से थुकी भारत सिक्किम या नेवा भ्या ओ साहित्य नापो वेक आत्मीय सापु योगदान या त अझ विशिष्ट याना बिगु ख वक्तव्य नेतना तगुदु। विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुथी खोपया गोसला विराट सिद दबुली जनकवि दुर्गाल श्रेष्ठ लुम्बुती साहित्य मुजा कोचा आगुदो महेन्द्र गोपाल कर्मचार्य अध्यक्षता नुकु प्रदीप रत्न साके ह्याकादिगु ज्या झोले कवि श्रेष्ठ लुम्बुती वे कया थिति कृति चुली चिया च चिनिया म किसिचा कपुया कु दुनिया चिनाख योगी शस्य मिमला शर्मा नुच्चे भक्त कवाङ संगीता पञ्च प्रदीप रत्न साके नवीन प्रकाश सुलोचना सैजु अमीरमाया रञ्जित लोकेन्द्र प्रजाचार पिन्स बोना निङ्कादिगु ख। सतीसिया छगु शनिला मिग पाङ्गा तजिक कोचागुदु शनिले सतीस मर्जन थगु लोकौ हागु थिथिमे हालादिगु ख। गोसाखल नेपाल कला संस्कृति उत्थान केन्द्र वेक या त नेदो नाप हनादिगुदु। म्यानमा या बौद्ध गुम्बा जुगु सैन्य हमला लाना मोतिन चिन्पेम नागरिक सिग्दु सेना सन् 2021 आङ साङ सुकी या सर्ख्यात अबदस्त यादुङ्गा अनगृह युद्ध जुयाचुङ्गुदु न्याद निस सेना प्रजातन्त्र समर्थक व जातीय विद्रोही नाप जुयाचुङ्गु ल्वापी आतक छगु लाक शिवे अपो मुनुत सी धङ्कु गुदु। इरानिया सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रेजाइ अमेरिका नीति कथ इरान विरुद्ध प्रतिबन्ध बोती काई पी दे या त शत्रु या दे या रूप क्यागु ख्याचो बिहादिगुदु वेक्ल अज्यागु दे या हित व स्वार्थे लिस बिगु थाइदिगुदु। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरान या त गब्लेन आणविक ल्वाब दे के बी मुज्यु धाइदिगुदु वेक्ल वासिङटन व तेहरान दोथी बोल्ना चोङ्गु कचय दोथी हर्मुज जल मार्ग या ना अमेरिकी लागा धका अल जजिरा धागु ख दक्षिण क्यारोलिना मर्टल भिचे गोसागु छगु ज्याजोस वेक्ल थथे धैदिगु ख। थौ हिमाली लाग्या मो थासे नन्याना वा वैगु चपु कुवा वैगु धागुदु पहाडी लाग्या आपल थासे न थथे जुगु तुकुमा यागुदु कोशी बागमती गण्डकी कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेश या पहाडी लाग्या या छगुनीको थासे आपल वा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागु ख। मिग सोनिकले सुगु फुटी पेङ्गु डिग्री सेल्सियस या क्वाजो लुगु ख थौन मिग थेहे तानैगु धागुदु थौ सोनिगले सुथे न्यात इजुया सुई निगु मिनेटे लुगु सूर्य शनिलिया कुता इजुया पिगु मिनेटे बी नेपाल भाषी बुख कोचाला सुभ्या।

Tasa losakusu losakusa le jojolapa nyenami bhaje mejepi hupa hagu nugasa jajole ji wedhuna chitana losakusa du ale nyenami bhaje mejepi chinsiesu hupa hagu nugasa dhaigu ji sakala nepamite gu sakha ale guki bises senanyawa samudaya te gu chaha pah imigu sanskar sanskruti sampada niche kaya imigu jivan hana wo nepal sarkar bia changu thiti kathaya go hak adhikar niti प्रणाली विषय शङ्खलावाला जुया उकी थी थी दुथ्यापी मनु त निशे कया स मदिपिनी गु स अले विशेष सेना थी थी स्रष्टा पिनी गु स या त न्यङ्का वयाचना गुजुल समानता समावेशिता झिसकल नेपामिते गु इतिहास ख स मसिका नापा झी गु हना नख सकल जनजाति आदिवासी ते गु हना ख तासे नेनामी भाजुमे जुपी थोझाजो छिसम बयान अन्ठानब्बे सयौँ 103 मेगाहर्स निशे कया छिस रेडियो नेपाल .gov.np रेडियो नेपाल .online वो रेडियो नेपाल या फेसबुक पेज बाखेन्ची सहलिनियङ्क चोनानिना दिफु अलेथो ज्याजो यता छिसम माया मतिना याना 42,711,42,736 छिसम फोन याना तपाईँक जिपी नपा छिगु नुग स पङ्का दिफु तासे नियनामी बाजु मेजुपी थो ज्याजो न्याका चनागु जुला जिरु विश्वास नापा प्राविधिक पासा उत्तम पाण्डेन अले थौन पी यागु मिनेट तक थो ज्याजो वै थोए ज्याजोले भोतिकया छिगो नुग ख पङ्का दिता इना प्यासे आधा साधकले नापा चिन्यावा तेगु राष्ट्रिय मेने मेना प्रापा चित लसुकुस यना चुने झासा आधा से थोमे झिगुनी दिए

0: जो उन्हें नामी भाजू में जो भी झीगु चौथी झीगु ही झीगु ने पा सदा सदा थी थी कथया गु ह्यूपा हयाए जो नी वे ह्यूपा पाखे जी सकल नेपा मी ते गु थी थी कथा या गु हाठिया जाया चौ गु हाठिया जिंके गु कुत न जोया चो नी दास निनामी भाजू में जो भी थो दासा जी दुर्गा लाल श्रेष्ठ मधुमा दुर्गा लाल जनकवि दुर्गा लाल अले झी नेपा मी ते गु छ तस्वाके गु नीति सदा सदा छ या त चाहिँ नि सक्कसिन मसिके गुड्ने थिएँ तातुना क घनादीमा अलि पलाछि नदीमा छमा साहित्यकार वरिष्ठ साहित्यकार गुमा साहित्यकार के मे चिना ख बा ख निसिङकया थि थि भाषा भाषिया गु गुपट्टि क्षमता दुमा क्षमता वान वरिष्ठ साहित्यकार मन्त वेक या त छिसन छु धैदी थो विशेषण थौँ सलाई यागु तातो नाजना जी वै गुजुल के अवस्थेन फोनना दिशा बालिस एघार सात सय एक्काइसो बालिस एघार सात सय छत्तिस सय धास हे आधा सा फोन शब्द दिमा पाश्चात्य लस्कु सेना छ हजुर हेलो
1: हेलो जो जसले पाएजी
0: हजुर जो जसले पाएजी हजुर लस्कु सधु हजुर राजेन्द्र नकमीजी
1: मखु मखुजी इतिलोनी नागबहादुरजी चन्द्रबहादुर साक्षी
0: हजुर चन्द्रबहादुरजी मखुची
1: पैसे जाँदा छिटो आगे
0: हजुर जित्त न

0: जो निनामी फाजमे जिपी उजन साख्या सले दुगु गथेयना ध्यागु गो गथेयना ते गु तो मति नयाँ स्वरूपे कुमारी व थेन्छु तैगु मेची सैन्य न्याय दिल अतिक बालागु ले लोक भागु मेख थो कुमारी या त छाना तगु मे थ मति नामी या त सुया चङ्गु मे तासे निनामी भाजु मेचु पि झास बयालिस एघार सात सय एक्काइस बयालिस एघार सात सय छत्तिस चिता प्याचना गु दु तासे फोन शब्द दिमा पास्ता लस कुसे हजुर हेलो हेलो
1: हेलो जोजोलपा
0: हजुर जोजोलपा जाजलस कुसदु
1: जी खपेश्वरी बिनाक रत्नलाल श्रेष्ठ निवा
0: हजुर रत्नलाल ज्यू मफुची हजुर चित्र पाँची जिया चङ्गु दु अहिले जेना बेली भवि जेना भविष्य ल हजुर
1: स्वर्गीय बासला बाध्यो
0: रत्नलाल श्रेष्ठ निवा खोप सूर्य बिनाका यहाँ नदी उजुल अवश्य न ख जनकवि दुर्गालाल अहिले वेक प्रगतिशील वरिष्ठ साहित्यकार ख अहिले दुर्गालाल श्रेष्ठ ध्यासा त नेवा समुदायमा जकमकु वेक यागु गुपति साहित्य विधा सकल नेपामी त्यता क घना दिगु दु वेक यागु मे अहिले चिना ख निसकया बाख त्यस वेक या बिचा सकल नेपाया त धिसिलाके त कुतयाना त गुदु वेक लम्बा बा लागु नेपाली मे न चोया दिगु दु बाल मे चोया दिगु दु फुकुङ कथा यागु विधा त दुमा छमा सेनलामा ढिसिलामा भाजु ख तर वेक झिगु दथुसा तापाक वने धुङ्ल वेक या त हना छुया सा जुई धेगु विशेष सङ्कलाबलाई नचनागु जुल दसे फोन शक्ति दिमा पासा त लस्कु स्याना छन् हजुर हेलो हेलो हजुर ज्याजो लस्कु सदु हजुर गणन सुन्नु नै दिएको थिएँ इमा डोलन सुदै दिया हजुर अहिले मफु पूर्ण बहादुरजी हजुर जी न मफीका सुनाएको छु ल कोही डिस्टर्ब फोन हजुर आजै मजु बराबर एकदमै डिस्टर्बका हजुर पूर्ण बहादुरजी थयाको विषय सुज छि एफएम अन जुया चौधुलाई एफएम अन जुया चौधु हजुर बराबर जुइ बराबर एकदमै डिस्टर्बका छु सय छु पाम ठुका आधा डिस्टर्स हजुर नेटवर्क चाहिँ नेटवर्क युट्युब छुट्या नेटवर्क डिस्टर्ब या खोला वा चाहिँ एफएम अन टाउला छुजुल हजुर आना छ काठिया यहाँ डिला हस् हस् एकैको सुबादु वेकल दुर्गालाल श्रेष्ठ या त बिचा ह्याकुसेन छुङख कना डिटा सना डिउख तर वेक यागु फोन यो कोही नेटवर्कै चाहिँ डिस्टर्ब जु गुलि छुन क्लियर मजुली हाक्न वेक एटा इना बिहाना गुजु ल ज्ञानी तिन छेमा पना छ न गुल गुल ठेथे जुइ हो तासे निनामी बाचु मेजु पिन छ सिता नलस कुछ दु बयालिस एघार सात सय एक्काइस सौ बयालिस एघार सात सय छत्तिस सय छिता प्याचो नाकु दु अहिले ज्याजो न्याका चनाको जुल जिरु श्रेष्ठ नपाम प्राविधिक भाषा उत्तम पाण्डे न दासा निनामी भाजु मेजु पिन थो ज्याजो आइत बापतिक सुतेसिया झिता इजुया झिन्छको मिनेट तक सुतेसिया झिता इजुया झिन्छता इतक वै दासा थे ज्याजुया त छिस माया मतिना यहाँ अन्ठानब्बे सय एक सय तिन मेगा हर्ज निना दिफु धासै आ धासा जी थो मे देसा मे नाप्न पछि त लसकुसा यहाँ चुने झासा धासै थो मे छिगुनी दिएँ

0: जु निनामी फाजो मेजुपी दुर्गालाल श्रेष्ठ याचो सुई दुगु थो भिरकुराम श्रेष्ठ याचले दुगुमे छिसा निना दिलाई निनामी फाजो मेजुपी छि निना चना दिगु दुसा छ सम्बालिस एघार सस्य एक्काइस सौ बयालिस एघार सस्य छत्तिस सय सिता प्याज नागु जुलाले निनामी फाजो मेजुपी झिगु देशे थिथि कथा यागु हाठ्या जागु एक नुगो मछिगु अले चाहिँ एक मानवता विरोधी छौ चाहिँ राक्षसी कथा जागु व्यवहार त झाँका त न छिसा निना चनागु जुल थना चाहिँ मनु मनुया त याइगु व्यवहार जनावर न शिवे न बानभाउ याना चङ्गु न झिसा खना चुनागु या जुल कुकी दुने हत्या हिंसा बलात्कार थे जागु चिरीमा मचा त नापा क्षमा मनु न क्षमा चाहिँ छुट्याएको उमेर घाममा मन न क्षमा मचा त चाहिँ थियो यहाँ मचा ख ठोला ठुटा झिसा चाहिँ माया मतिना याना यो कोही सुरक्षित कथा चाहिँ तधि यामा धैगु मानवता तो त चाहिँ गुपट्टि अमानवीय कथा कुरुता कथा चाहिँ गुपट्टि हत्या हिंसा बलात्कार जोया चङ्गु दु अलि ल्यामा ल्यामा दथि लुवाना गुपट्टि छुराङ के गु खुखुरी पालेगु लुवाना घापा यागु थे जागु यको झाँका त जोया चङ्गु दु थुज्यागु झाँका मयागु निधि सरकार सुशासन याकन देशा फेमा दैगु मनन्तु नाओ सुवा देशा से फोन सप्ते दिमा पासे त लस्कु स्याना छन हजुर हेलो आला ठिक जुल हजुर पूर्णबहादुर ज्यू खला हजुर धैर्यसँग पूर्णबहादुर ज्यू
1: नेत्र ब्रह्म प्रेमी मधुमा झिसे खन्त मा जिया जी उखे छुके ममा ममा थकित जिया जीव सिङ्गु ले तु जिनाचना प्रेम आसे दिली दिली जैसा करे वै जु प्रिय छछा सा प्रेम छछा सतो सा थौ वैल वैल पेसे आस मन जीगो जीगो आत्म दिखर प्रेम आसे दिली दिली दिली जैसा वैसला जैं खोचे जीव पति किना सा था
0: पूर्णबहादुर साके अलि थियो फोन साथी सदा थे वे वाजपेयी जक खला वा मेपी सञ्चार रेडियो नेपाली नेनी मुखुला धैगु निसन वे कि अवश्य न जिमी त जिमी रेडियो नेपाल या त झि सकसियागु त्याक अलि झिने वा तेगु चह पह व झिने वा तेगु ग्लिन कथयागु संस्कार संस्कृति ध्यागु खसा छौक त ऋतुपट्टि कयागु धुन अले नेपाल गाले चङ्गु गुन कथयागु धुन या त रेडियो नेपाल ह्याक चङ्गु दु ओके रेडियो नेपाल नेवा समुदाय यागु सोनिक यागु नेपा यागु चि या त साहित्य या त इतिहास या त मतिना याना चङ्गु दु थे मतिना या त छि नापा वा छि तक्क ठेङ्केगु नीति न छिसन रेडियो नेपाल या त माया मतिना याना फोन याना दिशा मतिना याना दिशा चिउन छुन कथयागु सल्लाह सुझाव दु सा पङ्का दिशा धासे निनाय बाजु मेजुपी चासा लसकुस एना चोने दासे आधा सा छपु मेदेस मेना प्रा पछि त लसकुस एना चोने बयालिस एघार सात सय एक्काइस सौ बयालिस एघार सात सय छत्तिस छिगु हे मतिनाया गुताख चासा छिता पिया चना गुदु

जो निनामी फाजो मेजो पिन थो जो भन्छौँ लागि ख धैगु मेची छ निनादिल अति कहाँ लोक वागु मे अहिले थो मे नै त थिए हे सकस्यागु जीवन सदा सदा सुथन ल्यामा सकस्यागु जीवन सदा सदा बाबा लागु रङ्गी चङ्गी सुहाँ भयाए चुने फेमा धैगु मनन्तु नाचुनागु जुल अहिले निनामी फाजो मेजु पिँ छिसा निनाचुना दि गु खसा थुख रेडियो नेपाल अहिले रेडियो नेपाल यागु ज्याजो आइतबा पति कुगु ज्याजो यु पहागु नुग स ज्याजो ख अहिले थो ज्याजो न्याका चुनागु जुल जिरुबी श्रेष्ठ अन्धासा ज्याजो न्याके ताजिता प्राविधिक अथङ क्वाली बिहा चुना दिगु दु उत्तम पाण्डे ज्यू न अहिले थो ज्याजो याथा छिस अहिले न्याङ्क चुना नेना दिगु खसा www.radionepal.gov.np www.radionepalonline नापा रेडियो नेपाल या फेसबुक पेज वा मेगु थिति अनलाइन पाखेना चिसा नेना दि फुदास नेपाल यङ्क चुना नेना दिगु खसा 98103 मेगा हर्च एफएमए छिसा नेना दि फु नापा ठो मिडिवेभ नापा थिति ब्यान्टे किन गयो यसा त विशेष सेना एफएम पाखे 98103 मेगा हर्च छिसा न्या त चुना सा नेना दि फुदास नेनामी भाजु मेजु पि थो ज्याजु या त माया मतिना ना छि कसिन जिमिता फोन या ना दिफु सल्लाह सुझाव बिहा दिफु निशेङ्क या रेडियो नेपाल या त न स्वेता चाया दिफु लसकुस दु धासे निनामी भाजु मेजु पिङ थाउजे न्याका चुनागु थाउजे खलाना चुनागु विषय दैगु जनकवि मधुमा जनकवि श्रेष्ठ स्वर्गीय जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ या त छिसन छु दैदी छु धका छिसन बिचाहाक दि वेक या त छु धासा वेक या हनाजी नापा वेक यागु थिति कथै यागु योगदान या त छिसन गथे ना छु यासा सदा सदा माका ते फै त्यही विशेष खनावलाई नाचनागु जुल झासा दासे फोन साप्ती दिमा पासा त लसकुसै या दैगु ख तर फोन साप्ती सुन म दिदका प्राविधिक पासा जानकारी बिहा दिगु दु ओके नुपी पासपिन झास सकसित न उति गेङ्क ए माया मतिना दु अलि निनामी बाजुमे जुपी दुर्गालाल श्रेष्ठ धासा त वेक लोक वामा जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ ख अले वेक मरे ढुङ्क्ल वेक यागु हना कथा वेक या त बिचा ह्याकुसे थौ यागु थो ज्याजो जिन्याका चुनागु जुल अलि निनामी बाजुमे जुपी दुर्गालाल श्रेष्ठ न नेपाली ओ नेवा भाषा भजन गजल अले मतिना यागु मे बाल मे मचा मस्ते गु मे निसे कया चिना ख बाख गजल वेक्ल चोया दिमा बाबा लाक प्रगतिशील निसे कया मतिना अले बाल मनोविश्लेषणात्मक कथन वैक्ल थिति कथन चाहिने थिति विधाके चुना वैक्ल छौ कथन ध्याएको खसा साहित्य लाग या त टिसिलाक दि गुदु थते टिसिलाक दिमा भाजु या त छिसन छु कथन विचार ह्याक दि छु कथन वैक या त लुमङ्का दि दासे निनामी भाजु मेजुपी आ दासा दुर्गालाल श्रेष्ठ यागु हे चोसी दुगु छगु मेची त देसा मे नाप्रा पाँची त लसकुसन याना चुने तासे दुर्गालाल श्रेष्ठ नहे चोया दिगु घाजु याजक खोइगु ख जी दैगु मे चिता देसना चुना मे नाप्रा पाँच झसौँ लसकुस याना चुना

चु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ सानगिर रेठाङ निदा ढेनमुला गैन्दिरा थिङ काइब्लोन बालेन्द्र शाह मुस्ताङ ग्याम याम्बु खासियु बानमुला काइब्लोन शाह दिम थेमे छ्याम तिलमा मुस्ताङ दोस्युबा लिचा मुक्ति नाथला मोइबो लासियुबा मुबा जोङ प्रहरी गेजाङला सूचना अधिकारी सन्तोष बस्न्यात सेसुङबा अनुसार काइब्लोन शाह जोमसोम बेनी सडक घ्यालम ग्याम याम्बु खासियु बानमुला बारा जोङला जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका घिक्ला सोमधिङला जाजा कोला गरिमा चौधरी थोरी ताबा अपराधला घटनाला ताम्री नेपाल सरकार थिएन पीडित थेत्मा घुङ्री सोम बुधे सहमति ताबा मुला दिम्लोन खाङ्री तिलमा यासे ताबा काठेरी दिम्लोन सुदन घुरुङ छ्याम ब्लोन खाङला ब्लोन कार्य पीडित गरिमा चौधरीला दिम थेमे थिएन सरकारला मुल्मी घुङ्री सहमति ताबा हिँला सहमति अनुसार ग्रेन ग्रेन अपराधिक घटनारी मिनिसे माइबा अनुसार दाते ठिम मुबा कसुर थिएन सजायला व्यवस्था गोसी ठिम सोबारी सुझाव छ्याम प्रतिवेदन निसा नाङ्री पिनबा निर्णय लाबा मुला चुघे लाबारी ठिम न्याय थिएन संसदीय मामिला ब्लोन खाङ ग्याम निस सदस्य गरिमा न्याय संकल्प समिति शोभा ताबा मुला ऊर्जा किनेर थिएन सिंचाइ ब्लोन विराज भक्त श्रेष्ठ से ग्रेन सिंचाइ आयोजना से सानम उत्पादन थिएन गेला अफसर नोन याङबा सोबान बोरबारी खाम्जी विषाम नाम्सा नाम्सा ग्याम स्यान्दो हुल्डी मिनी निबादा काबारी खाम्ला बिसी सुङबा मुला सुनसरी मोरङ सिंचाइ परियोजना ग्याम प्रभावित मिनी कादेला ताम थेबा लिचा ब्लोन श्रेष्ठ से सिंचाइ दा नहार सोबा ताम्री जेखेन च्याबारी आता बिसी सुङबा मुला ब्लोन श्रेष्ठसे सिंचाइरी लाबा लगानीला प्रतिफल सानम उत्पादन ग्याम याङबा ताबासे सिंचाइ छ्याम सानम उत्पादन लेना लाबान सानम बोन कादेला घेखोर्दा गिक सोसी गाछा भोर्तोला बिसी सुङबा मुबा चुराङलासिन तिनिन मोरङ उद्योग छोङ सङथेन उद्योग गेन्दुन मोरङला मुल्मी थिएन विराटनगरी काठी लासिबान ऊर्जा किनवेर थिएन सिंचाइ ब्लोन विराज भक्त श्रेष्ठसे बर्खारी लेबा विद्युतदा उद्योग थिएन स्यान्दो थुम्री तोबा भीमा लाना उपयोग लासी महसुल संरचनारी तोबा सुधार लाबारी सरकार से बङ लाबान मुला बिसी सुङबा मुबा सा व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला थिएन सामान्य प्रशासन ब्लोन प्रतिभा रावल से साला समस्या थुम्ना लाबारी गोरसोमनोन तहला सरकार जिम्मेवार तादोला बिसी सुङबा मुला कञ्चनपुरला दोधारा चाँदनी नगरपालिकारी तिनी सेङबा गेखोरी ब्लोन रावल से साला समस्या थुम्ना लाबारी सरकार से प्राथमिकता पिन्सी गे लाबान मुला सुङबान प्रदेश थिएन स्थानीय सरकार ग्याम्नोन चुनोन अन्सारला रो तादो बिसी सुङबा मुबा ब्लोन रावल से तिनी जोङ प्रशासन गेजाङ कञ्चनपुरी सा प्रशासन गेजाङ नापी गेजाङ राङबा पालिकाला ग्रेनपो कादे सा सम्बन्धी समस्या थुम्ना लाबारी काठुई लासियुबा मुबा ग्रेन ठिम्पोन छेनपो डाक्टर मनोज कुमार शर्मा से ठिम सम्पादन डी बारथेन बेन्सला गे भूमिका कोङबा ताला बिसी सुङबा मुला तनहु जोङ ठिमखाङ बार इकाइ से तिनी दमौली रिसेङबा गेखोरी ठिम्पोन छेनपो शर्मा से बारथेन बेन्च गुङ डिक्सी गे लाबारी खाम्जी विषाम जेखेन प्रभावकारी न्यायिक निरूपण ताला बिसी सुङबा मुला ग्रेन ठिम्पोन छेनपो डाक्टर शर्मा से न्यायिक सम्पादन मोकोनला जिम्मेवार ताबासे चु ताम्री मोकोन लापो तोला बिसी सुङबा मुबा हुम्ला जोङला गोर्की लोपखाङला छात्रावास ढुइला ग्रेन जोखिमरी मुला जा जा कोट ताजा कोट गाउँपालिका गाला मदाना देव लोपखाङला छात्रावासला जग गाम्री ढुइ निबा लिछा जोखिम लेबा हिँला ढुइसे तिलाई जा ग्ला जेखेन बोर्बा मुसाइनोन तिलमा दोषी निबा ढुइचे छात्रावास दिमखाङला जोखिम लेबा हिँला बिसी छात्रावासला मास्टर से पाङबा मुला चुराङलासिन कालीकोट सदर मुकाम मानमा बजार ला गोर चुइब्ली बिमा लाना दिम ढुइला जोखिम रि मुला गोरसोम दिम ढुइसे नाङ्सी जिन्बा मुला बिसामा स्यान्दो दिमला मार ग्याम ढुइ निबान मुला खाडा चक्र नगरपालिका से प्रशासकीय दिमखाङ सोबारी जग ख्वामा थोन्बा ढुइदा आकामा बजारला सडक ग्यालम छ्याम मिनीला दिमरिन जोखिम लेबा हिँला ललितपुरला पुलचोकरी मुबा मिली पो आयोगला गेजाङ फिर्क्याप धरनारी चिबा
लघु वित्त ऋणी कार्य नेपाल सरकार थिएन सहमति ताबा लिचा राङ्ला दिम नि बामुला नेपाल सरकार थिएन छ्याई किन्बा कादेला मुल्मी कादे घुङ्री तिलमा काठु ताबा लिचा चिब्ली बुदे सहमति ताबा छ्याम धर्ना गेखोर स्थगित ताबा हिँला सहमति ताबा लिचा तिनी स्वरी सरकार से साझा यातायातला बस कादे व्यवस्था लासी थेनी कादेदा पुइबा हिँला झापा मोरङ सर्लाही मौतरी सिन्धुली बारा पर्साथे नबल परासी छ्यामला जोङला छ्याई किन्बा कादेदा राङराङला धिम्री पुइबा हिँला जोङ प्रशासन गेजाङ याम्बुसे प्राइभेट होस्टेल कादेदा लागिक नाङ्री सरकार से तोबा तोक लाबा ठिम्दा तेनबारी पाङबा मुला गेजाङ से तेबा कागिरी याम्बु जोङ नाङ्री सेङबा छात्रावासला ताम्री लानन गुनासा खाबा से नियमित थेन आकस्मिक अनुगमन लाबन खाबा मुला बिसी पाङबा मुला अनुगमन लाबा धुरी ठिम्दा नाङबा तिलाई छात्रावासता लाख सोम टाङ्गा जरिमाना किन्सी सिलोन लासी झिन्बा मुला बिसी प्रशासन से पाङबा मुला प्रशासन से छात्रावास सेङबारी सरकारी थेन स्थानीय तह से शोभा ठिम्दा तेनबारी लोबोन कादेदा सुरक्षित थेन मर्यादित लासी थानबारी थेन आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कोङबा सोबारी मोहेजेन लाबा मुला रेङ्बा दुई दोना मोबाइल दि ताम लामा नाबेङ थेबारी च्याङना ताबान निवास स्यापा मुला दाते रादाङसे ग्यार्जा घिक्से गाँचुई हेन्से ग्यार्जा नि मिनी भेरी अस्पताल दि नाबेङला समस्या किन्सी आखाम्बा ताबा मिनी खाबारी तिबा लिछा भेरी अस्पताल नेपालगञ्जला नाबेङ ना खारे थेन थोबो ह्याम्ला विभागीय ग्रेनपो दिनेश कुमार चौधरी से सुङबा मुला डाक्टर चौधरी से मोबाइल दि रेङ्बा दुई तामा चुला असर नाबेङला जाली नोङबा ताबासे थेबा नोन च्याङना ताबान नाबेङ मिन्बा राङबा समस्या म्राङबा मुला बिसी सुङबा मुला सानी भेरी गाउँपालिका ब्रे एकान्तला मध्य पहाडी लोकमार्गरी विद्युतीय मोटर से ठोकमा आमा झामे सिबा मुला सिमली ग्याम चौर जहरी क्यार निबान लाबा विद्युतीय मोटर से मुसी कोट खलङ्ग्या ग्याम सुर्खेत क्यार खावन लाबा मोटर दातिनी स्योरी ठोकमा थे मोटर रि क्रेबा गुल्मिला रुरु थुम गाउँपालिका ब्ली बले टक्सारला निचुई ढु दिङला स्वस्तिका पौडेल थिएन थेला नि दिङला जामे सन्धिका घेवाली सिबा मुलाबिसी जोङ प्रहरी गेजाङला सूचना अधिकारी

नारी गम्भीर घाइते ताबा बिस्टला चितोनला मेडिकल कलेज मान लमन लामा सिबा मुबा स्यान्दो हुल्डी पुइसी पिन्ना बिबान ठगी लबा अभियोगी प्रहरी से मेन्दो निदा चुङबा मुला मियो प्रहरी समाचार काचेचे पाङबा अनुसार काभ्रे फलाञ्चोकला मण्डन देवपुर नगरपालिका चुइनिला सोमचुई निस दिङला नवीन लामा थेन सल्यान ला शारदा नगरपालिका नि दिम्ताबा गाचुइ दिङला रमेश रेउलेदा चुङबा हिँला प्रहरी से पाङबा अनुसार नवीन से मलेसिया पुइसी पिन्ना बिबान मेन्दो सोम मिनी ग्याम लाख चुइब्ली थेन रमेश से अमेरिका पुइसी पिन्ना बिबान मेन्दो गिक ग्याम लाख सोम टाङ्गा किन्बा मुबा टाङ्गा किन्बा लिचा सम्पर्क रे आचिबा थेनी कादेदा ग्याम्बु उपत्यका अपराध अनुसन्धान गेजाङ ग्याम निबा प्रहरी टोली से तिलमा चुङबा हिँला सल्यान्डी दोङ गुर्मा च्याप्दिसी मेन्दोगी कमिनी सिबा मुला जोङ प्रहरी गेजाङ सल्यान ला अनुसार कपुरकोट गाउँपालिका नि सिमल कुनाला सोम्ची दिङला विकास श्री स मगर दोङसे च्याप्दिसी सिबा हिन्ला बिसी जोङ प्रहरी गेजाङ सल्यान से पाङबा मुला स्यान्सी बन मोबा सानग्युर जिन्जी फ्याफुल्ला।

ई रेडियो नेपाल ठीक रविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह काठमाडौँसँग प्रस्थान केने छलथि। प्रधानमन्त्री शाह परिवारक सदस्य सहित शनि दिन मुस्ताङ पहुँचल छलथि। शनि दिन अपराह्न ओ मुक्तिनाथक पूजा अर्चना कयलनि। जिला प्रहरी कार्यालयक सूचना अधिकारी संतोष बस्याल के अनुसार प्रधानमन्त्री शाह जोमसोम बेनी मार्गसँग काठमाडौँ दिस प्रस्थान कयलनि अछि। प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा न्याय सम्पादन में बार आ बेंचक महत्वपूर्ण भूमिका रहबाक बात बतौलन अछि। तनहु जिला अदालत बार इकाई आई दमौली में आयोजन कयल स्वागत कार्यक्रम में वो बार आ बेंच विचक सहकार सँ मात्र प्रभावकारी न्यायिक निरूपण संभव हेबाक बात बतौलनि। ओ न्यायिक सम्पादन सभक साझा जिम्मेवारी भेलाक कारणे एहि मे सब पक्षक सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहल उल्लेख कयलनि। न्याय सम्पादन के प्रभावकारी आ जनमैत्री बनेबाक लेल न्यायालय सँ संबंधित सब पक्ष भी सहकार समन्वय आवश्यक रहबाक ओ उल्लेख कयलनि। प्रधान न्यायाधीश शर्मा न्यायालय प्रति नागरिकक विश्वास कायम रखबाक लेल न्याय सम्पादनक प्रक्रिया के थप प्रभावकारी बनाओल जेबाक बात पर जोर देलनि। 3 वर्षीय बालिका गरिमा चौधरीक जघन्य हत्याक विरोध में बीतल बुध दिन से अवरुद्ध बनल पथलैया बीरगंज सड़क खंड 4 दिन पश्चात संचालन में आयल अछि। काठमांडू में सरकार आ पीड़ित परिवार बीच मध्य राय 3 बुधाक सहमति भेला पर आई भिनसर से सिमराक जनजीवन सामान्य बन लागल अछि। जितपुर सिमरा उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 1-10 धुरीक बालिका गरिमा बीतल रवि दिन भिनसरे घर से बेपत्ता भेल छलि। 2 दिन पश्चात मंगल दिन सांझ स्थानीय एक खाली घर में लाश भेटल छल। घटना में संलग्न रहल आ अभियोग में प्रहरी वही राति पड़ोसी 16 वर्षीय एक युवा आ 24 वर्षीय प्रग्रेश चौधरी के पकड़ने छल। पड़ोसी से जघन्य अपराध भेल तथ्य बाहर भेलाक बाद स्थानीय परिवारजन दोषी के फांसी के सजा हेबाक मांग रखैत सिमरा 10 दूरे आगू मुख्य सड़क में टेंट टाँग का आंदोलन शुरू कयने छल। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल भूमि संबंधी समस्या समाधानक लेल तीनू तहक सरकार जिम्मेवार होयबाक बात बतौलनि अछि। कंचनपुरक दोधारा चंद्री नगर पालिका में आई आयोजित कार्यक्रम में वो भूमि संबंधी समस्या समाधान उच्च प्राथमिकता में राखि सरकार काज कर रहल स्पष्ट करैत प्रदेश आ स्थानीय सरकार सँ ओही अनुसारक सहयोग होयबाक बात बतौलनि। ओ पालिका में देखल गेल समस्या समाधानक लेल नीतिगत सुधारक लेल छलफल भेल बतौलनि। मंत्री रावल आई जिला प्रशासन कार्यालय कंचनपुर में भूमि प्रशासन कार्यालय नापी कार्यालय सहित पालिकाक प्रमुख सब भूमि संबंधी समस्या समाधानक लेल छलफल कयने छलथि। ओ महेन्द्रनगर स्थित निर्माणाधीन अवस्था में रहल मझगांव विमानस्थल आ दोधारा चांदनी स्थित सूखा बंदरगाहक स्थलगत अवलोकन कयने छलथि। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ बरखाक समय में उत्पादन होयवला अतिरिक्त विद्युत स्वदेश में अधिक खपत करेबाक लेल मौसमी विद्युत महसूल तथा बहुतो विद्युत खपत करयवला ग्राहक के सहूलियत दर में विद्युत उपलब्ध करबाक व्यवस्था लागू करबाक तैयारी भ रहल बतौलनि अछि। मोरंग उद्योग व्यापार संघ आ उद्योग संगठन मोरंग के प्रतिनिधि संघ आई विराटनगर में भेल छलफल में बरखाक समय में बढ़बाक विद्युत उत्पादन के उद्योग तथा अन्य क्षेत्र में अधिकतम उपयोग करबा सन महसूल संरचना में आवश्यक सुधार करबाक लेल सरकार केंद्रित रहल बतौलनि। मंत्री श्रेष्ठक सचिवालय के अनुसार उद्योगक उत्पादन लागत घटेबाक विद्युत खपत बढ़ेबाक आ प्रणाली में उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत के स्वदेश में उपयोग करबाक उद्देश्य विद्युत महसूल के थप व्यवहारिक बनेबाक विषय में सरकार काज कर रहल जानकारी देलनि। विश्वक सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण करयवला आरोहीक अधिकार सुनिश्चित करबाक लेल पर्यटन आइन में सुधार कयल जेबाक आवश्यकता बताओल गेल अछि। सगरमाथा आरोही संघक 25वां स्थापना दिवस के अवसर पर आई आयोजित रजत महोत्सव कार्यक्रम में आइन के समय सापेक्ष बनबैत आरोही मैत्री बनाओल जेबाक बात पर जोर देल गेल। महोत्सव उद्घाटन कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा सदस्य मिंगमा डेविड शेरपा पर्यटन क्षेत्र के समय सापेक्ष बनेबाक लेल आ आरोहीक अधिकार सुनिश्चित करबाक लेल वर्तमान पर्यटन आइन में सुधार कयल जेबाक बात बतौलनि। ओ विक्रम संवत 2035 साल में बनल पर्यटन आइन अखन धरि ओहने पूर्ण रूप में परिवर्तन नहीं होयब समस्या के रूप में रहल उल्लेख कयलनि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राजसभा पर्यटन प्रवर्धन आई सँ जोड़ल गेल विषय के प्राथमिकता में राखि आगू बढ़ल बतबैत प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरपा स्वयं के आरोही के आवाज बुलंद करबाक लेल जनता संसद में जिम्मेवार सहित पठौलाक कारणे एहि जिम्मेवारी के ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। सगरमाथा आरोहणक 73 वर्ष पहुँचलाक बावजूदो बहुत आरोही उचित सम्मान आ सुरक्षा नहीं पाओल हुनक कथन अछि।
प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की समाज में घटल अपराधी घटना प्रहरी संगठन के इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में रहला कारण ओहन घटना में संलग्न अपराधी के कोनो समय कार्यवाही के परिधि में अनबाक बात बतौलन ओ दशको बाद एहन घटना में संलग्न पकड़ के कानूनी कार्यवाही करते आल स्पष्ट कलन। राष्ट्रीय समाचार समिति सहित अन्य मीडिया सब बातचीत में प्रहरी महानिरीक्षक कार्की लंबा इतिहास रहल प्रहरी संगठन एहन घटना के नहीं बिसरबाक बात बतौलन। प्रहरी महानिरीक्षक कार्की केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो मार्फत पुरान जघन्य प्राकृतिक अपराध के अनुसंधान चल रहल जानकारी दलन। नेपाल आ भारतक चार जिलाक सुरक्षा अधिकारी सीमा सुरक्षा के और प्रभावकारी बनेबाक लेल संयुक्त गश्ती क्षेत्र विस्तार करबाक संगे सीमा अपराध संबंधी सूचना नियमित रूप में आदान प्रदान करबाक सहमति जनौलक अछि। महोत्तरीक सदर मुकाम जलेश्वर में काल्हि सम्पन्न नेपाल भारत सुरक्षा अधिकारीक समन्वयात्मक बैठक में हाथ हथियार तथा मादक पदार्थ आयात निर्यात मानव तस्करी सहित सीमा अपराध नियंत्रण एवं रोकथाम सीमा स्तंभक सुरक्षा तथा मरम्मत संभार संबंध में छलफल भेल। महोत्तरीक सहायक प्रमुख जिलाधिकारी संजय कुमार पोखरेल बतौलन दुनू देशक सुरक्षाकर्मी करैत आयल संयुक्त गश्ती के विस्तारक लेल सीमा क्षेत्र में होबयवला अपराधी गतिविधि नियंत्रण के लेल घटना संबंधी सूचना एक दोसर सँ साझा करबाक विषय में सहमति भेल ओ जानकारी दलन। बैठक में महोत्तरीक प्रमुख जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव सरलाहिक प्रमुख जिलाधिकारी विजय राज सुवेदी रोहतक प्रमुख जिलाधिकारी दिनेश सागर सीतामढ़ी जिला मजिस्ट्रेट तनय सुल्तानिया आ सीतामढ़ी प्रहरी उपेक्षक अमित रंजन सहित सुरक्षा अधिकारी सहभागिता रहल छल। मच्छर के कटला सँ जैपनीज इंसेफलाइटिस जेई रोगक संक्रमण तथा मृत्यु हनिहारक संख्या बढ़ि रहला सँ एकर जोखिम प्रति सतर्क आ सुरक्षित रहबाक लेल परिवार कल्याण महाशाखा सभसँ अनुरोध कयलक अछि। स्वास्थ्य सेवा विभाग अंतर्गतक परिवार कल्याण महाशाखाक पछिला प्रतिवेदन अनुसार देशक 25 जिलाक 59 स्थानीय तह में 80 गोटे प्रयोगशाला में पुष्टि भेल जैपनीज इंसेफलाइसिस रोगी देखल गेल अछि। आई एक विज्ञप्ति जारी करैत महाशाखा पुष्टि भेल रोगी मध्य 86% जैपनीज इंसेफलाइटिस रोग विरुद्धक जेई खोप नहि लगाओल जनौलक अछि। एहिना एखन धरि संक्रमित मध्य 21 गोटे के मृत्यु भऽ चुकल अछि। मृतक सब गोटे जेई खोप नहि लगाओल पाओल गेल अछि। जेईके केस रोगी के अवस्था एखन धरि सबसे अधिक झापा में 10, कैलाली आ मोरंग में 7-7, सप्तरी आ कंचनपुर में 6-6 तथा चितवन सुनसरी आ नवलपरासीपुर में 5-5 रहल देखल गेल अछि। मुख्यतः तराई तथा भीतरी मध्यक जिला में केंद्रित भेलाक बावजूदो इलाम कावड़े प्लांचो काठमांडू सिंधुली सुर्खेत सहित पहाड़ी जिला में जेडी पुष्टि भेल प्रतिवेदन जनौलक अछि। जैपनीज इंसेफलाइटिस मुख्यतः संक्रमित क्यूलेस जातिक मच्छर के कटला सँ पटैत अछि। बहुतो रोगी धान खेत आ सुगुर पालन कयल जायवला क्षेत्र में बसवास करयवला एकर संक्रमण देखल गेल स्वास्थ्य सेवा विभाग जनौलक अछि। संगे उच्च बुखार माथ दुखायब बेहोश होयब झटका आयब चेतना में परिवर्तन सन लक्षण देखल गेला पर घरेलू उपचार में समय नहीं बिता कर उपचारक लेल तत्काल निकट के स्वास्थ्य संस्था में लौ जयबाक लेल महाशाखा अनुरोध कयलक अछि। पछिला तथ्यांक अनुसार 80 गोटे पुष्टि भेल मध्य 51 गोटे 64% 15 वर्ष से ऊपर के रहल अछि। जेई के कारण भेल मृत्यु में 50 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति में हिस्सा में 81% रहल अछि। एहि वर्ष हाल धरि पुष्टि भेल 80 गोटे रोगी में पुरुष 43, महिला 37 गोटे रहल अछि। देशभर मानसूनी वायुक प्रभाव रहल अछि। मानसून के न्यून चापी रेखा सरदर स्थानक आसपास रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। महाशाखा के अनुसार एखन देशभर साधारणतया बदरी रही कोसी बागमती लुमनी कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेशक किछु तथा गंडकी प्रदेशक दूटा स्थान में मेघगर्जन आ ठनका सहित हल्का सँ मध्यम धरिक वर्षा भऽ रहल जनाओल गेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीनिया प्रविधि कंपनी अलीबाबा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्षेत्र में लगानी विस्तार करबाक लेल हांगकांग में नया शेयर निष्कासन मार्फत 80 अरब हांगकांग डॉलर लगभग 10.2 अरब अमेरिकी डॉलर जुटेबाक योजना बनाओल आई जनौलक अछि। हांग जाओ में मुख्यालय रहल अलीबाबा AI क्षेत्र में भारी लगानी करैत आयल अछि। कंपनीक शेयर धारक सब ई लगानी सँ प्रतिफल प्राप्त करबाक विषय में अभिरुचि व्यक्त करैत आयल अछि।
कम्पनीको विश्वव्यापी एआई नेतृत्व विस्तार करबाक लेल शेयर निष्कासन करऽ लागल अछि। अलीबाबा विज्ञप्तिमे जनौलक अछि। कम्पनीक अनुसार शेयर निष्कासनसँ प्राप्त सम्पूर्ण रकम एआई सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तार तथा अपन फुल स्टैक एआई क्षमता विकासमे लगानी करत। रेडियो नेपालसँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषामे समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। शिक्षा विधेयक को सरकार पहली प्राथमिकता में रखकर काम कर रही है, शिक्षा मंत्री सुमित पोखरियाल का कथन। मच्छरों के काटने से फैलने वाले जापानी इंसेफेलाइटिस का जोखिम बढ़ा, स्वास्थ्य सेवा विभाग ने की सतर्क रहने की अपील। सगरमाथा आरोहियों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन कानून में सुधार को सरोकार वालों ने बताया जरूरी। और ईरान पर अमेरिका के संभावित नए और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ गया है तनाव। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सुमित पोखरियाल ने कहा है कि सरकार विद्यालय शिक्षा विधेयक को पहली प्राथमिकता में रखकर काम कर रही है। काठमांडू में आयोजित परामर्श गोष्ठी में मंत्री पोखरियाल ने कहा कि शिक्षा कानून बनाने की प्रक्रिया पारदर्शी और सहभागिता मूलक होगी। उन्होंने संबंधित पक्षों के सुझावों को केवल चर्चा तक सीमित न रखकर कानून और नियमों में शामिल करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने संघ, प्रदेश और स्थानीय सरकारों के बीच अधिकारों के स्पष्ट बंटवारे और प्रभावी समन्वय की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का कम से कम 20% निवेश किए जाने की आवश्यकता बताई। ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने कहा है कि बड़ी सिंचाई परियोजनाएं कृषि उत्पादन और रोजगारी के अवसर बढ़ाने के साथ जनसंख्या पलायन की समस्या कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सुनसरी मोरंग सिंचाई परियोजना के स्थलगत अध्ययन के दौरान मंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि सिंचाई को केवल नहर निर्माण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंचाई में निवेश का लाभ कृषि उत्पादन के जरिए मिलता है, इसलिए सिंचाई के साथ कृषि उत्पादन उत्पादकता बढ़ाने और किसानों के कार्यक्रमों को भी एकीकृत रूप से आगे बढ़ाना जरूरी है। भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल ने कहा है कि भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए संघ, प्रदेश और स्थानीय तीनों स्तर की सरकारों को जिम्मेदार बनना होगा। कंचनपुर की दोधारा चांदनी नगर पालिका में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री रावल ने कहा कि सरकार भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देकर काम कर रही है और प्रदेश तथा स्थानीय सरकारों से भी सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर सामने आ रही समस्याओं के समाधान के लिए नीतिगत सुधार पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर सभी पक्षों को एकजुट होने की अपील भी की। प्रधान न्यायाधीश डॉ. मनोज कुमार शर्मा ने कहा है कि न्याय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में बार और बेंच की महत्वपूर्ण भूमिका है। तनहू जिला अदालत बार इकाई द्वारा दमोली में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि न्याय प्रदान करना सभी की साझा जिम्मेदारी है, इसे प्रभावी और जनमैत्री बनाने के लिए न्यायपालिका से जुड़े सभी पक्षों के बीच सहयोग और समन्वय जरूरी है। प्रधान न्यायाधीश शर्मा ने नागरिकों का न्यायपालिका पर विश्वास बनाए रखने के लिए न्याय प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। मच्छर के काटने से फैलने वाले जापानी इंसेफेलाइटिस के संक्रमण और इससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य सेवा विभाग के परिवार कल्याण महाशाखा ने लोगों से इसके जोखिम को लेकर सतर्क रहने और सुरक्षित उपाय अपनाने की अपील की है। महाशाखा के अनुसार देश के 25 जिलों के 59 स्थानीय तहों में 80 लोगों में जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हुई है। इनमें से 86% मरीजों ने जेई टीका नहीं लगवाया था। अब तक संक्रमित लोगों में 21 की मौत हो चुकी है और मृतकों में से किसी ने भी जेई का टीका नहीं लगवाया था। सबसे अधिक मामले झापा में 10, कैलाली और मोरंग में 7-7 तथा सप्तरी और कंचनपुर में 6-6 सामने आए हैं। हालांकि मुख्य रूप से तराई और भीतरी मधेश में पाए जाने वाले इस रोग की पुष्टि इलाम, काभरे पलांचो, काठमांडू, सिंधुली और सुर्खेत जैसे पहाड़ी जिलों में भी हुई है। कुष्ठ प्रभावित लोगों को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और सक्षम नागरिक के रूप में समाज में स्थापित करने पर जोर दिया गया है। काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि राज्य को सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाने वाले कुष्ठ प्रभावित लोगों के लिए आय अर्जित करने के अवसर और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ ने कहा कि कुष्ठ रोग के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और परिवार तथा समाज से अलग होने वाले लोगों के आत्मसम्मान पर असर पड़ता है। उन्होंने सरकार से इसके लिए कानूनी व्यवस्था करने की मांग की। नेपाल में करीब 2,00,000 लोग कुष्ठ रोग से प्रभावित हैं। इनमें लगभग 30,000 लोग दिव्यांगता का शिकार हुए हैं, जबकि हर साल करीब 2,000 से 2,500 नए संक्रमण सामने आने की जानकारी दी गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारु गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। विश्व की सर्वोच्च चोटी सगरमाथा पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन कानून में सुधार की मांग की गई है। सगरमाथा आरोही संघ के 25वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने वर्ष 2035 में बने पर्यटन कानून को समयानुकूल और पर्वतारोहियों के अनुकूल बनाने पर जोर दिया। प्रतिनिधि सभा सदस्य मिंगमा डेविड शेरपा ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र को आधुनिक बनाने और पर्वतारोहियों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानून में सुधार जरूरी है। सगरमाथा आरोही संघ की अध्यक्ष माया शेरपा ने पर्वतारोहियों और माउंटेन गाइड की सुरक्षा अधिकार और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रभावित नीति बनाने और अलग कल्याणकारी कोष स्थापित करने की मांग की। आकर्षक वेतन का प्रलोभन देकर विदेश भेजने के नाम पर रकम ठगने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में काभरे पुलांचुक के नवीन लामा और सल्यान के रमेश देव रेवले शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक नवीन ने तीन लोगों को मलेशिया भेजने के नाम पर 14 लाख रुपए, जबकि रमेश ने एक व्यक्ति को अमेरिका भेजने के नाम पर 3 लाख रुपए लिए और उसके बाद संपर्क से बाहर हो गए। दोनों को काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय की टीम ने गिरफ्तार किया है। ललितपुर के पुलचोक स्थित मानवाधिकार आयोग के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे लघुवित्त ऋणी सरकार के साथ 14 बिंदुओं पर सहमति के बाद आज घर लौट गए। सरकार और ऋणियों के प्रतिनिधियों के बीच कल 6 भाद्र को हुई वार्ता में सहमति बनने के बाद धरना स्थगित कर दिया गया। सरकार ने आज सुबह करीब 9 बजे साझा यातायात की बसों की व्यवस्था कर 323 ऋणियों को 8 बसों के जरिए उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के अनुसार झापा, मोरंग, सरलाही, महोत्तरी, सिंधुली, पारा, परसा और नवलपरासी सहित विभिन्न जिलों के ऋणियों को उनके अपने क्षेत्रों की ओर भेजा गया। रुकुम पश्चिम की सानीभेरी गांव पालिका 8 एकांत स्थित मध्य पहाड़ी लोकमार्ग में इलेक्ट्रिक वाहन की टक्कर से मां बेटे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सिमली से चौरहजारी की ओर जा रहे इलेक्ट्रिक वाहन ने आज सुबह मुसीकोट खलंगा से सुरखेत की ओर जा रहे वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में गुलमी की 26 वर्षीय स्वस्तिका पोडेल और उनकी 2 वर्षीय बेटी सांदिका गेवाली की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल मां बेटी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। टक्कर मारने वाले इलेक्ट्रिक वाहन और उसके चालक को पुलिस ने नियंत्रण में लिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान पर अमेरिका के संभावित नए और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की ओर से लगाए जाने वाले नए प्रतिबंधों को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने इसे दूसरे देशों पर अमेरिकी दबाव थोपने की कोशिश बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अमेरिकी वाणिज्य मंत्री स्कॉट बेसेंट ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंधों की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने चीन से भी इन प्रतिबंधों में सहयोग करने की अपील की है। हालांकि चीन ने नए प्रतिबंधों का विरोध करते हुए कहा है कि इससे पश्चिम एशिया का संकट हल नहीं होगा। चीन ने विवाद का समाधान कूटनीतिक तरीके से करने की वकालत की है। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और ईरान के 80% से अधिक तेल की खरीद करता है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा विधेयक को सरकार पहली प्राथमिकता में रखकर काम कर रही है, शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरियाल का कथन। मच्छरों के काटने से फैलने वाले जापानी इंसेफ्लाइटिस का जोखिम बढ़ा, स्वास्थ्य सेवा विभाग ने की सतर्क रहने की अपील। सगरमाथा आरोहियों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन कानून में सुधार को सरोकार वालों ने बताया जरूरी। और ईरान पर अमेरिका के संभावित नए और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ गया है तनाव। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
4: फोर जी एलटीई मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
5: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल,
3: राष्ट्रिय रेडियो, राष्ट्रको सञ्चार।